0: ఉదయ్ తరంగిణి కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 8 గంటలు. ఇప్పుడు సమాచార ప్రభాత్, ఇంకా మార్నింగ్ న్యూస్ వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాత్ మే ముఖేష్ కుమార్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की. कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना. तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू. दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ. हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए. भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह. और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है. सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है. विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं. इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है. प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है. उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं. ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है. सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है. आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है.
3: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है. मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों की सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है. वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है. ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है. बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है. आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी

0: बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
1: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव के महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
0: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। PVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित

0: निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सेना में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार, और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में, और जिन अलग अलग पहलुओं की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो, या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो, या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है, और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार, और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में। पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप, तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा, या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ। वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
1: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
2: जी
1: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
3: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। इसको बनाने का टाइम लगेगा,
1: बिल्कुल
3: 4-5 साल, 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंचमार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंचमार्क फॉर मेनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड द ईज ऑफ लिविंग फॉर आवर फैमिलीज।
1: ओके,
3: तो उस बेंचमार्क से आपसे आगे बात बढ़ाते।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या

0: आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रह के आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
0: एक
1: वो
0: होलिस्टिक
1: पूरी
0: डिफेंस।
1: पूरा पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है
0: जी
1: उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिसे इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है ये, अब हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये केवल स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था।
0: जी
1: इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया, और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं। कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था,
0: बिल्कुल
1: ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में।
0: जी
1: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है। वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे, अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं,
0: जी
1: वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल
1: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए एक अपलिफ्टमेंट का
0: यानी
1: एक
0: काफी
1: टूल।
0: लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या हैं सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया।

0: हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो,
1: जी
0: घर में एक टॉयलेट हो। ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम, इतना बड़ा काम हुआ है, सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने आपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस हैं। ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था।
1: जी
0: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं, तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है, वो साफ पानी है और एक एनवायरनमेंट है, जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है। और टॉयलेट आती है आसपास, गांव में सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है, कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से, मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं उनकी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफॉइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले, कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में। अब
1: जी
0: सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास हैं, कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी।
1: जी
0: और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है, कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है, कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे, कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे। दोनों की मेरे ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
2: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से
1: जी
2: लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें में पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में भी देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है,
1: जी
2: ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी,
1: जी
2: पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था। वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी निहार का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
1: बिल्कुल
2: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है। जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में, यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था।
1: बिल्कुल
2: टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं ये कहूंगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर।
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा। शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
0: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया,
2: उसी उसी
0: उस
2: उसी
0: घर की तो दशा उसी दिन
1: जी
0: बदल
1: जी उसी
0: गई।
1: दिन बदल गई
0: अब देखिए, मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ,
2: जी जी
0: पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना, इसका अंक मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल
0: उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे
2: सर
0: चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था। एवरी सेकेंड।

0: इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में
1: जी
0: पानी लग रहा था। मैथ्स है ये,
2: जी
0: रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी।
2: जी
0: 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप सोचो। आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं
2: नहीं
0: है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़, 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था और आज हमें 79%, 80%, 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता है कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5, 6, 7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउस होल्ड्स में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है इस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
2: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से, इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
2: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये 2 मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
2: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जाम्पल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
2: जी,
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाए, राज्यों ने भी दिखाए, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
2: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
1: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट
2: जी,
1: पर RBI सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले, आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको कोने पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने है, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको

0: नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे वगैरह वगैरह, ये अपने आप नहीं आया है। सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने के, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती,
1: बिल्कुल
0: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा। सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती। सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल
0: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों
1: अलग अलग नजरियों
0: दोनों के रिस्पॉन्स में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे आधा घंटा, आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे, सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जनता की कैटेगरी में जरूरत है,
0: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
2: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
2: इतने लोग, और वो

0: इस तरह से और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है, तो क्या होगा? या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो,
1: जी
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना। तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब
1: जी
0: ये बे बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए? जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन परिवारों को।
1: जी
0: तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1 लाख लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन, एग्जैक्ट
2: जी
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए, या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2 लाख करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो, उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसे ही एक यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफ़ी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है, 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब की वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है, और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है, वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार ये आपने देखा, मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ पे, जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए,
1: जी
0: वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़

0: के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ
1: बिल्कुल
0: है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था। मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए ये लॉन्च किया था। वो इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है, तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है। इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है। केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम करे, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव है। इसमें ये भी आम आदमी है,
1: जी
2: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व यह है,
1: जी
2: और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
1: जी
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं। मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या है? कोई नहीं।
1: कोई नहीं, बहुत खूब। मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे
2: बहुत बहुत
1: साथ इस
2: शुक्रिया
1: एपिसोड में
2: आपका।
1: जुड़े और हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम इंतवरकु గౌరవనీయులు భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు 25 సంవత్సరాల ప్రజాసేవను పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జాతీయ ప్రసార విభాగం ఆధ్వర్యంలో 30 రోజుల పాటు వినిపిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే విన్నారు.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और धारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईडीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के

0: के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री, सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day event, which began yesterday, is witnessing the participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today embarked on an official visit to Singapore. During the three-day visit, the finance minister will hold a series of high-level engagements with the leadership of Singapore, senior members of the business and investment community, and global institutional investors. During the visit, Ms. Sitharaman will call on President of Singapore Tharman Shanmugaratnam and Prime Minister of Singapore Lawrence Wong. She will also meet Deputy Prime Minister of Singapore Gan Kim Yong and Foreign Minister of Singapore Dr. Vivian Balakrishnan. Discussions will cover key areas of the India-Singapore Comprehensive Strategic Partnership and take forward the outcomes of the International Society for Molecular Recognition, including cooperation in trade and investment, digital financial connectivity, capital markets, taxation, semiconductors, advanced manufacturing, skilling and aviation. Counting of votes for the Thattanchavadi Assembly constituency by-election in Puducherry has been completed. All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes in the seat vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. Ashok Anand secured 13,358 votes, while his nearest rival, Indian National Congress candidate E. Vinayakam, polled 4,876 votes. In Tamil Nadu Assembly by-elections at Madurantakam and Dharapuram, the ruling TVK has taken the lead in both the constituencies. The leading contestants, Maragatham Kumaravel and Satyabhama had resigned from the

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवंगन, कौशल्या देवंगन, हेमलता और डिम्पल देवंगन।
1: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
1: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
1: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताज़ा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम

0: उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
0: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: मिमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
0: जी, यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
0: जी तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
0: जी
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी

0: सांस्कृतिक शक्ति है। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
1: और ज्ञानपीठ पुरस्कारों साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
0: जी हाँ बिल्कुल, तो आइए श्रोताओं हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
1: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रिया

0: पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
0: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
1: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का

0: नतमस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक है भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहार।
5: सत श्री अकाल।

0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
1: तेजा सिंह और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
2: हां साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी

0: పరిస్థితులకి కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది.
1: మేడం, మరి ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. మీరు చేస్తున్న వర్క్ తో పాటుగా మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి మీరు చేస్తున్న పనే చాలు మేడం. ఇట్ విల్ సెట్ ఇట్ ఎగ్జాంపుల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం.
2: మీరింతవరకు మహిళలు, బాలికల పరిరక్షణ, సాధికారత కోసం 2 దశాబ్దాలుగా కృషి చేస్తున్న డాక్టర్ మమతా రఘువీర్ ఆచంట గారితో పరిచయం విన్నారు. నిర్వహణ శ్రీమతి నిహారా కానేటి. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ.
3: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी. दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर मुजव्वजा एहतजाज की इजाजत नहीं दी है. अमनो कानून बरकरार रखने की खातिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 नाफिज की गई है. कल सुबह सवेरे 4 बजे और दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने पहले स्टेशन से ही मनसूख कर दी गई हैं. वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में खवातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान सावडी असेंबली सीट का जिमनी चुनाव जीत लिया है. 4 असेंबली हलकों और लोकसभा की 1 सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा. अब खबरें तफसील से. दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर CJP की तरफ से मुजव्वजा मुजाहिरे की इजाजत नहीं दी है. आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर मुजाहिरे या दीकर प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाजत की दरखास्तों को कम से कम 10 दिन पहले दाखिल किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे पहले CJP को इस जगह पर मुजाहिरा करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो मजकूरा रहनुमा खतूत और अपनी तरफ से किए गए तहरीरी वादों पर अमल करने में नाकाम रही. ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि इजाजत न देने का फैसला पार्टी की पिछली नाकामी के तनाजुर में किया गया है कि वो नई दिल्ली इलाके में पुलिस के रहनुमा खतूत और उसके अपने तहरीरी वादों, नीज मौजूदा नज्म व जब्त की सूरत हाल, अवामी हिफाजत और ट्रैफिक साबतों पर अमल न कर सकी.
5: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग. इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है. जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था.
4: उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं, जिनकी रूह से अवामी हिफाजत और अमनो कानून बरकरार रखने के लिए जरूरी बंदिशें लागू हैं. उन्होंने खबरदार किया कि दिल्ली पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ मौजू कार्रवाई करेगी. आज दोपहर 2 बजे के बाद से सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जो अपने पहले स्टेशन से रवाना होंगी और उन्हें नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह और दोपहर 2 बजे के दरमियान पहुंचना है, उन्हें उनके पहले स्टेशनों पर ही मनसूख कर दिया गया है. रेलवे की वजारत ने बताया कि यह फैसला इन दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में सड़कों पर शदीद इम्कानी ट्रैफिक हजूम के तनाजुर में लिया गया. वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में खवातीन और बच्चों की तरक्की के बारे में महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे. ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी, जिसमें सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और खवातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक अफसरान शिरकत कर रही हैं. तफसील हमारे नामा निकार से.
6: महकमा जाति सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसका तसव्वुर वज़ीर आज़म ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने, मुल्क की तरजीहात की इज्तिमाही जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और करीबी मरकज़ रियासत शराकत दारी के जरिए इसके नतीज में तेजी लाने के लिए पेश किया था. इस कॉन्फ्रेंस में 4 अहम मौजूद पर तवज्जो दी जा रही है, جن میں تغذیہ، ابتدائی تعلیم، بچوں کی حفاظت، خواتین کی حفاظت

0: Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 PM today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 AM and 2 PM tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Thanchavadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक लोक कल्याण मार्ग केंद्रीय सचिवालय जनपथ पटेल चौक नई दिल्ली सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी

0: शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड
0: सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
4: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूचित एज, HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का

0: लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। आकाशवाणी के इस हिंदी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ जयदीप। श्रोताओं, अंतरिक्ष एक ऐसी दुनिया है जो कभी सिर्फ कल्पना और जिज्ञासा का विषय हुआ करती थी, आज हमारी रोजमर्रा का जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। मौसम की जानकारी से लेकर कृषि, संचार, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी तक, अंतरिक्ष तकनीक हमारे जीवन को कई स्तरों पर प्रभावित कर रहा है। वर्ल्ड स्पेस वीक हमें अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियों को जानने और इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को समझाने का अवसर देता है। चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे अभियानों ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नए आयाम दिए हैं। साथ ही निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की बढ़ती भागीदारी ने इस क्षेत्र में नए अवसरों के दरवाजे खोले हैं। इसी विषय पर आज इस विशेष कार्यक्रम में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC की डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर N अपर्णा से विशेष बातचीत प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय है इंडिया टुवर्ड्स स्पेस लीडरशिप। तो आइए सुनते हैं ये विशेष साक्षात्कार। अपर्णा जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: अपर्णा जी, वर्ल्ड स्पेस वीक हमें अंतरिक्ष विज्ञान और उसकी उपलब्धियों को समझाने का मौका देता है। आज के समय में भारत की अंतरिक्ष यात्रा किस मुकाम पर पहुंच चुकी है और दुनिया भारत को किस नजरिए से देख रही है?
1: वर्ल्ड स्पेस वीक के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले सब श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करती हूं और सभी श्रोताओं को ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि स्पेस जो है अभी अछूता नहीं है। ये अभी सभी, मतलब छोटे से छोटे बच्चा भी आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और चाहे वो पढ़ाई में हो या खेल में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम लोग। जब आप वर्ल्ड स्पेस के बारे में बात कर रहे हो तो आज इसरो इस मुकाम पे है कि वो अपना इंडिविजुअल सैटेलाइट्स, खाली इंडिविजुअल सैटेलाइट्स लॉन्च करने की नहीं सोच रखता है, जो खत्म हो गया है अब वो एरा। अब हम जो काम कर रहे हैं वो मून पे कैसे जाना है, मून से जो है वहां के सरफेस का मटेरियल कैसे वापस लाना है और उसका शोध करना है, और उससे हम मानवों को, मानव जाति को कैसे लाभ होगा ये करना है। हम अपना गगनयान कर रहे हैं, हम अपना भारतीय स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं जहां पे हम लोग माइक्रोग्रेविटी पे बहुत सारे एनालिसिस करने वाले हैं। सो इस तरह से 2047 तक इसरो जो है वो एक नया दौर शुरू करेगा जहां पे हम प्राइवेट पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, कमर्शलाइजेशन होगा, उनको भी हम लोग सहायता करेंगे कि वो भी लॉन्च करें, वो भी अपने सेंसर्स बना सकें, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करो वो कम पड़ते हैं जब हम आपदा प्रबंधक की बात करें या कृषि सिंचाई की बात करें या ग्राउंड वाटर, भूगर्भ जलों की बात करें, तो जितने भी सैटेलाइट हों वो कम पड़ते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसरो सारे सैटेलाइट प्राइवेट को दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हों डेटा कम पड़ता है, क्योंकि हमारा भारत जो है इतना बड़ा और विशाल है कि हमको कम से कम 30, 35, 40 सैटेलाइट चाहिए अगर हमें उसको

0: हर तरह से मॉनिटर करना है, और एक आंख जो है वो आसमान में हो जो कि
1: बिल्कुल
0: हमेशा भारत की निगरानी करे,
1: बिल्कुल
0: राइट? सो हम इसरो इस लेवल पे हैं आज.
1: जी, बिल्कुल अपर्णा जी, भारत की अंतरिक्ष यात्रा वास्तव में एक लंबी और लगातार विकास की यात्रा रही है, और आज भारत की उपलब्धियों को सिर्फ मिशन्स की सफलता के रूप में नहीं, बल्कि देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता के रूप में भी देखना चाहिए। अपर्णा जी, हमारा अगला सवाल, इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशन्स के जरिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इन उपलब्धियों में से आपके नजरिए से कौन सा प्रयास भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है और क्यों?
0: देखा जाए तो हर मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
1: जी
0: हर मिशन में एक नई तकनीक या नए तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है. जब आप आदित्य L1 की बात करते हैं, तो हम लोग पूरी दुनिया में पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोलर लैबोरेटरी बनाई हुई है आकाश में, और एक ऐसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं जिसको, वहां पे हमने वो सैटेलाइट स्थिरता से रखा हुआ है ताकि हम सूरज को हमेशा देख पाए और उसकी गतिविधियों का हम विश्लेषण कर सके. So, चंद्रयान जो है वो अपने में एक अलग तकनीक है जो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज चंद्रमा पे तो ग्रेविटी नहीं है. हमारे हिसाब से तो हर मिशन एक नया तकनीक है और हर मिशन हमारे लिए एक चैलेंज मिशन है.
1: जी, बहुत अच्छी बात मैम। अपर्णा जी, आज अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट तकनीक आम नागरिक के जीवन को किस किस तरह प्रभावित कर रहा है?
0: बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि इतना पैसा, 500 करोड़, 600 करोड़ डाल के आप लोग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, फायदा
1: जी
0: क्या है इसका?
1: जी
0: ये तो हर कॉमन मैन के दिमाग में यही रहता है कि क्यों कर रहे हैं ये लोग इतने सैटेलाइट लॉन्च. लेकिन अब अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं, तो छोटा सा वो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप ऑर्डर करते हो, वो सब भी तो रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट्स के द्वारा ही होता है. क्योंकि हम जो हैं, जैसे गूगल मैप में आप अपना रूट मैप देखते हो, उसी तरह से हमारा भुवन भी है जहाँ हम रूट मैप देख सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच सकते हैं अननोन जगह पे जाने के लिए. सो हर छोटी चीज के लिए हम रिमोट सेंसिंग जो है हमारे लिए एक अनअवॉइडेबल टेक्नोलॉजी बन गई है. जैसे कि किसी जमाने में टाइपिंग होता था कि टाइपिंग सबके लिए जरूरी है, उसी तरह से आजकल रिमोट सेंसिंग हर चीज के लिए जरूरी है. तो जब आप एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है. तो जैसे अभी हमारे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स बोए गए हैं, कब ये फसल होगी, कितनी फसल होगी, उसका एस्टिमेशन भी हम रिमोट सेंसिंग से देते हैं. अब किसी जगह पे कोई सिटी बनाना है, डेवलप करना है, अर्बनाइजेशन करना है, तो वो सिटी किस डायरेक्शन में ग्रोथ करे ताकि लोगों को पानी मिले, लोगों का आना जाना सहूलियत मिले, रोड स्ट्रक्चरिंग, रोड टॉपिंग, ये सब भी रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही करते हैं.
1: जी
0: फिर ग्राउंड वाटर जो है, कितना पानी है यहाँ पे, अगर हम यहाँ एक सिटी बनाएंगे तो पानी सफिशियंट है नहीं है. और आजकल तो नया चल रहा है एक हाइड्रा, जहाँ पे सारे लेक्स का हमने मुआयना करके पूरा डेटाबेस बनाया हुआ
1: जी
0: है,
1: जी
0: और वो हमने, हमारे पास 88 का भी डेटा है, उसके साथ कंपेयर करके कितने थे लेक और अब कितने बचे हुए हैं ये भी
1: जी
0: बताया हुआ है. सो दिस इज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू फॉर द सिटीज कि टू रिजनोवेट द लेक्स सो दैट पानी की कमी ना हो.
1: जी
0: उसी तरह हम सॉइल की भी टेस्टिंग करते हैं और सॉइल कार्ड बनाए हुए हैं हम लोगों ने, जहां पे हम फार्मर को ये बताते हैं कि कौन सी फसल बोनी है सो दैट उसका लाभ अच्छा हो. सो इस तरह से हर किसी एप्लीकेशन में, हर किसी मोड पे रिमोट सेंसिंग एक टूल बन गया है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते.
1: जी बहुत रोचक मैम। अक्सर हम सैटेलाइट को सिर्फ अंतरिक्ष में घूमती हुई चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि उससे मिलने वाली जानकारी जमीन पर लिए जाने वाले फैसले में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपर्णा जी, भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? तकनीकी विकास, कुशल मानव संसाधन, निवेश या अंतरिक्ष प्रतियोगिता?
0: अंतरिक्ष को यानी इसरो को आगे बढ़ाने के लिए एक तो हमें चैलेंज ये आ रहा है कि हमें कुशल मानव नहीं मिल रहे हैं जो इस एरिया में सक्षम हो. तो इसके लिए हमने क्या किया है, बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू की हुई हैं, बहुत सारे बच्चों को छोटे से ही, मतलब यानी 5वीं क्लास, 6ठी क्लास के बच्चों को रिमोट सेंसिंग से अवगत करा रहे हैं. और हमने कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है कोर्सेज भी इम्प्लीमेंट कर रखे हैं
1: जी
0: जो कि हम लोगों को, जैसे वो बाहर आए यूनिवर्सिटी से तो तैयार हो वो GIS

0: इसमें काम करने के लिए और रिमोट सेंसिंग पे काम करने के लिए। दूसरी बात यह है कि कई बार हमको रॉ मटेरियल की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे
1: जी
0: रॉ मटेरियल चाहिए होता है हमें अपना सीसीटी बनाने के लिए या इसके लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया है, अभी बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज को हमने अपने छत्र छाया में लिया है कि उन लोगों को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और वो लोग हमारे लिए जो है काम करें और अच्छे से हमारे लिए लॉन्च व्हीकल्स के पार्ट्स बनाएं या सेंसर्स बनाएं या एंटीना के पार्ट्स बनाएं। क्योंकि ये एक बहुत मतलब भारत जो है इतना विशाल देश है जहाँ पे जरूरत सैटेलाइट्स की बहुत ज्यादा है,
1: जी
0: सो
1: जी
0: खाली इसरो जो है ना इसको नहीं संभाल पाएगा,
1: जी
0: तो इसरो की मैन पावर और इसरो इसको नहीं संभाल पाएगा। सो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोगों को, स्टार्टअप्स को अगर हम अंदर लेते हैं और उनको अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, तो जहां हम साल में 3 या 5 सैटेलाइट लॉन्च कर पा रहे हैं, वहां में भी हम 20 या 25 सैटेलाइट
1: जी
0: लॉन्च कर
1: जी
0: लें। सो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात है और हम इस तरह से उसमें से उभरने की भी कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल जी मैम, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ना सिर्फ नए मिशंस लॉन्च करने की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए टेक्नोलॉजी, टैलेंट, रिसर्च और एक मजबूत इकोसिस्टम, सभी का साथ होना जरूरी है।
0: सही बात है।
1: अपना जी, हमारा अगला सवाल, आज भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स की भूमिका तेजी से बढ़ रही है, आप इस बदलाव को भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस तरह देखते हैं?
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स जो हैं अभी रिसेंटली लॉन्चेस भी हुए हैं हमारे, हमारे लॉन्च पैड शार से लॉन्च किए गए थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं। और इससे क्या होगा, हम लोगों को एडिशनल हाथ मिले हैं विद स्टार्टअप्स। लाइक अगर हम लोग खाली 4,000 5,000 लोग हों, तो ये स्टार्टअप्स हमसे जुड़ के हम लोग 10,000 लोग बन गए हैं,
1: जी
0: तो हमारी हाथों को और मजबूती मिली है। और ये नए नई पीढ़ी के युवा हैं जो ये स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, तो इनकी सोच भी अलग होती है, तो हमें नए नए तरीके के सेंसर्स, नए नए तरीके के एप्लीकेशंस,
1: जी
0: नए नए तरीके के स्टोरेज सिस्टम्स, सो नए नए तरीके की चीजें मिलती हैं, जिससे जो है ना हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन फॉर पीस जो हमारा मोटो है वो हम उसको साधने में सक्षम
1: बिल्कुल
0: रहेंगे।
1: बिल्कुल मैम, निजी क्षेत्रों के आने से नए आइडियाज, नए बिजनेस मॉडल्स और इनोवेशन के लिए नए अवसर भी खुल रहे हैं,
0: करेक्ट,
1: और शायद यही मिलकर भारत का स्पेस इकोसिस्टम को और मजबूत बना सकता है।
0: या
1: अपना जी, हमारा अगला सवाल, अगर हम इंडिया टुवर्ड्स स्पेस लीडरशिप की बात करें, तो स्पेस लीडरशिप का असली अर्थ क्या है? क्या सिर्फ बड़े मिशंस की सफलता स्पेस लीडर बनने के लिए काफी है, या फिर कुछ और मापदंड पर भी ध्यान देना होगा?
0: हमारा भारत का मोटो जो है स्पेस फॉर पीसफुल यूटिलाइजेशन,
1: जी
0: इस पर ही विक्रम साराभाई ने इसरो स्टार्ट किया था। तो अगर हम स्पेस लीडर बनना चाहते हैं तो दो बातें हैं, एक तो एप्लीकेशंस मतलब सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है हर पिक्सल का इस्तेमाल होना चाहिए और ये इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो एप्लीकेशंस में भारत ही नंबर वन है,
1: जी जी
0: फॉर रिमोट सेंसिंग इन पीसफुल एप्लीकेशंस में भारत ही नंबर वन है। और दूसरी बात यह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, वो भी हमें मतलब R&D रिसर्च करना है, उसमें भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो जब हम इन दोनों का बैलेंस करेंगे और इन दोनों को सक्षम रूप में एक साथ लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली हम लोग स्पेस में नंबर वन बन जाएंगे।
1: बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है मैम। आपकी बात से ये स्पष्ट होता है कि स्पेस लीडरशिप सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से प्राप्त ज्ञान और तकनीक को देश और समाज के हित में प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने की भी
0: करेक्ट,
1: बात है। अपना जी, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में NRSE का काम बहुत महत्वपूर्ण है। आज सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी किस तरह बाढ़, सूखा, कृषि, जल संसाधन, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जमीन पर फैसले लेने में मदद कर रहा है।
0: हम शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन से।
1: जी मैम
0: क्योंकि भारत इतना विशाल है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ
1: जी
0: है, ऊपर हिमालयाज हैं, तो हमारे जो मॉनसून है दो तरह के मॉनसून भी हैं हमारे, तो आजकल जो ये क्लाउड बर्स्टिंग
1: जी
0: बिकॉज
1: जी
0: ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, थंडर स्टॉर्म्स, क्लाउड बर्स्टिंग इतना हो रहा है कि शहर के शहर डूब रहे हैं।
1: जी जी
0: तो जब हम आपदा प्रबंधक की बात करते हैं तो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो हर सैटेलाइट का अपना एक साइकिल होता है। कुछ सैटेलाइट्स 24 दिन में उसी पॉइंट

0: पे आते हैं, कुछ 5 दिन में, कुछ को रोटेट कर सकते हैं तो
1: जी
0: एक दिन में ही वो देख लेता है। तो जैसे ही कोई आपदा आती है हमें सूचना मिल जाती है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या करते हैं, डेटा एक्वायर करते हैं। और अगर हमारे कोई सैटेलाइट पास नहीं कर रहे हैं तो हम फॉरेन सैटेलाइट से भी मदद लेते हैं, और ये डेटा लेके उसके बाद इसकी एनालिसिस होती है कि पानी कहाँ तक पहुंच गया है, पानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना एरिया डूब गया है, कितना कितनी फसल डूब गई है। और हम रूट मैप भी बनाते हैं कि अगर उन लोगों को कुछ खाना पीना देना हो उनकी मदद कैसे करें, ये सब बना के हम स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं।
1: जी
0: और स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन दिस वो लोग अपना प्लान बनाते हैं कि आपदा प्रबंधन कैसे करना है। जैसे
1: जी
0: अभी नेपाल का हुआ था तो नेपाल का पूरा मैप हमने बना के दिया, पूरा
1: जी
0: एनालिसिस किया हमने कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर वो हमने उन लोगों को पहुंचा दिया है।
1: जी जी
0: सो ऐसे हर जब कोई सूखा पड़ता है तो सूखे की तो हम हर हर महीने हम लोग ड्राउट मैप्स बनाते हैं और उसको हमारे वेबसाइट पे डालते हैं ताकि जिसको भी हो, जो भी स्टेट गवर्नमेंट वाले हों, वो उसको देखें। और उनको हर महीने का देखने देखने से पता चल जाता है कि इसकी हरियाली कम हो रही है, हरियाली ज्यादा हो रही है, तो उस पर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ड्राउट आ रहा है नहीं आ रहा है।
1: जी
0: और जैसे आप पानी की बात करते हैं तो पानी की तो हम पूरे वाटर बॉडीज जो है मॉनिटर करते हैं, और हमारा मैप जो है भुवन में रहता है तो वो कोई भी उसको स्वाइप करके देख ले और
1: जी
0: पता
1: हाँ
0: चल जाता है। फिर हम लोग ग्राउंड वाटर भी करते हैं, ग्राउंड वाटर एनालिसिस भी करते हैं कि पानी यहाँ है नहीं है। सो इस तरह से हम लोग सारी एप्लीकेशंस की मदद करते
1: जी
0: हैं।
1: मैम, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ स्पेस तक नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारे खेतों, शहरों, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे तक पहुंच सकती है। अपर्णा जी, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां बढ़ रही है, लेकिन स्पेस डिब्रीज, बढ़ती सैटेलाइट संख्या और अंतरिक्ष की सुरक्षा जैसे नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ रहा है?
0: ये रियली एक बहुत बड़ी चुनौती है,
1: जी
0: स्पेस डेब्रिस जो है बहुत बड़ी चुनौती है। सो कई बार क्या होता है कि हमारे सैटेलाइट्स को दूसरे सैटेलाइट्स से बचाने के लिए मनूवरिंग भी करते रहते हैं हम लोग, ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन इस दिशा में भारत जो है दो चीजें कर रहा है, एक तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स बना रहा है,
1: जी
0: बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम R&D कर रहे हैं उस पे, सो दैट एक बार लॉन्च करें तो फिर वही व्हीकल हम लोग दूसरे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। इससे क्या होगा, एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम डेब्रिस से भी बच सकते
1: जी
0: हैं। एंड दूसरी बात यह है कि हम स्पेस डॉकिंग भी कर रहे हैं। स्पेस डॉकिंग मतलब एक सैटेलाइट ऑलरेडी है, दूसरा जाके उससे जुड़ेगा, और जुड़ के अगर कुछ फ्यूल करना है, अगर
1: ओहो
0: कुछ उसको ठीक करना है,
1: जी जी
0: सो
1: जी
0: वो सब चीजें भी हो सकती हैं। एंड भारत की जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो तो जनरली बोलते हैं 5 साल, बट 10-12 साल तो आराम से चल जाती
1: जी
0: हैं वो। सो और तीसरा R&D वर्क भी चल रहा है कि डेब्रिस को जो है वापस ले आए, तो सो दैट क्या होगा, अगर हम सैटेलाइट को वैसे ही वापस ले आते हैं तो ठीक ठाक करके दोबारा भी उसको
1: जी
0: इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो ये सब चल रही है।
1: बहुत ही अच्छा मैम, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे अंतरिक्ष में हमारी गतिविधियां बढ़ रही है वैसे वैसे अंतरिक्ष को सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने में भी उतना ही जरूरी हो जाता है। ये वास्तव में भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि सब कुछ क्लैरिटी के साथ हो। हमारा अगला सवाल, आज के युवा अंतरिक्ष को लेकर बहुत उत्साहित है, आपके अनुभव से अगले 10-20 वर्ष में कौन से नए क्षेत्र भारत के युवा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा अवसर लेकर आ सकता है?
0: अंतरिक्ष आजकल तो जो नई पीढ़ी है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई हुई है,
1: जी
0: क्योंकि हमारी नई स्पेस पॉलिसी 23 में लागू की गई थी, तो वो स्पेस पॉलिसी के अनुसार सब कुछ खुला हुआ है, डेटा खुला हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप लॉन्च व्हीकल बना सकते हो, आप लॉन्च कर सकते हो। पहले तो ये था कि खाली इसरो ही लॉन्च करेगा,
1: जी
0: तो ये स्पेस नई स्पेस पॉलिसी के आधार पर 5 मीटर तक का डेटा भी फ्री है, तो पहले खरीदना पड़ता था।
1: जी जी
0: तो ये जो नए स्टार्टअप्स वगैरह थे ये लोग उतना मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो इतना डेटा है, इतना डेटा है कि ये लोग इतना एनालिसिस कर सकते हैं कि कुछ नया, कुछ ना कुछ नया उस एनालिसिस में से आ सकता है। सो बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके लिए। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 250 से 300 तक के स्टार्टअप खाली
1: जी
0: अंतरिक्ष के काम पे में लगे हुए हैं।
1: अच्छा
0: तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा और लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी
1: जी
0: इसमें, तो मैं तो सोच रही हूँ मे बी इट विल गो लीप्स एंड बाउंड्स।

0: जी, बहुत बढ़िया मैम। युवाओं के लिए तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि स्पेस सेक्टर में अवसर सिर्फ पारंपरिक वैज्ञानिक भूमिका तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी, डेटा, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के भी कई नए रास्ते खुल रहे हैं। अब बात करते हैं भविष्य की। अपर्णा जी, अगर हम 2047 के भारत की कल्पना करें, तो आप भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस मुकाम पर देखना चाहती है और उस सपने को साकार करने के लिए किन तीन चीजों पर सबसे अधिक ध्यान देना जरूरी है?
1: 2047 में हमको कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट होना चाहिए,
0: जी
1: कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट, जिसका मतलब है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी अपने हों सारे, अपने भारत भूमि से लॉन्च किए हुए सैटेलाइट्स, अपने खुद के बनाए हुए सैटेलाइट्स, सो दैट जो भी हमारी जरूरत है हमारे सैटेलाइट्स पूरी करें, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो घर के अंदर की बात हो, जैसे क्रॉप हुआ, डिजास्टर हुआ, जो भी हुआ, एंड उस समय तक हम लोग

0: सैटेलाइट्स, अपने खुद के बनाए हुए सैटेलाइट्स, सो दैट जो भी हमारी जरूरत है हमारे सैटेलाइट्स पूरी करें, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो घर के अंदर की बात हो, जैसे क्रॉप हुआ, डिजास्टर हुआ, जो भी हुआ. एंड उस समय तक हम लोग स्पेस की जो एनालिसिस है, आउटर स्पेस जिसे हम बोलते
1: जी
0: हैं, तो वहां पे हम अपने आप को भारतीय अंतरिक्ष गगनयान, अंतरिक्ष स्टेशन, ये सब हम एक सक्सेसफुल रूप में देखना
1: जी
0: चाहते हैं. दैट्स ऑल वी वांट टू सी आवरसेल्व्स
1: ट्वेंटी
0: इन
1: फोर्टी सेवन
0: 2047.
1: जी बिल्कुल बहुत सुंदर विजन है मैम. 2047 अब बहुत दूर की बात नहीं है, और आज लिए गए फैसले ही उस भविष्य की दिशा को तय करेंगे.
0: हाँ, वही तो. एक तो स्पेस के ऊपर जहाँ पे ये भारतीय अंतरिक्ष अभियान मतलब स्टेशन रहेगा, और हमारे अपने सैटेलाइट्स मून पे जाएंगे
1: जी
0: और मटेरियल वापस लेके आएंगे, और वीनस भी है जहाँ हम
1: जी
0: वीनस की भी वो करेंगे. सो ये तो हुआ अंतरिक्ष के हिसाब से.
1: जी
0: दूसरा हुआ रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग के हिसाब से तो जितने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं करेंगे, और इन सैटेलाइट्स का डेटा हम पीसफुल इस्तेमाल में करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो है हमें थोड़ी सी तो कमी है डेटा में जो हम बाहर के देशों के सैटेलाइट से लेते हैं, तो वो हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं कम्प्लीटली
1: जी
0: इन टर्म्स ऑफ द पार्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स. वी वॉन्ट टू बी
1: यस
0: आत्मनिर्भर. दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू बी बाई 2047.
1: जी आपने जिन बातों पर जोर दिया वो निश्चित रूप से यात्रा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अपर्णा जी, अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल आज सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कृषि और सामाजिक विकास के लिए भी हो रहा है. आपके अनुसार आने वाले समय में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्पेस टेक्नोलॉजी भारत में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है?
0: दो क्षेत्र हैं. एक तो अर्बनाइजेशन,
1: जी
0: क्योंकि भारत जो है सब लोग गांवों को छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और शहर जो है इतने काबिल नहीं है कि इतने लोगों का लोड ले सके.
1: जी बिल्कुल
0: तो अर्बनाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है, और इस अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए रिमोट सेंसिंग एक बहुत बड़ा टूल है. जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो.
1: जी बिल्कुल
0: पूरा उथल पुथल हो जाना है इसके बिना, अनलेस यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ डेटा. एंड दूसरा है कृषि, क्योंकि बदलते हुए वातावरण के कारण जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं आजकल. तो इसलिए बदलते हुए वातावरण के हिसाब से क्या क्या क्रॉप्स लगाने और कब लगाना है ये भी इसी टूल से आता है.
1: जी
0: सो ये दो चीजें हैं जिसका मतलब हमें रिमोट सेंसिंग जो है हमें मदद करने वाला है. बट इवन पानी के हिसाब, अगर हम जल संसाधन देखें अपने, तो वो भी हम रिमोट सेंसिंग के से ही मॉनिटर कर सकते हैं. इतने बड़े देश को आप मैन्युअली किसी को भेजें और बोले भी तुम उसको मेजर करके आ जाओ, तो वो
1: जी
0: नहीं
1: हाँ
0: होगा.
1: जी
0: तो अगर आपको पूरे देश को एक साथ देखना है, कहाँ पानी है, कहाँ पानी नहीं है, कितने लेक सूख गए हैं या कितने लेकों का गलत इस्तेमाल हो रहा
1: जी
0: है, सो वो सब चाहिए. तो आपको एक कंप्लीट सिनॉप्टिक व्यू ऑफ इंडिया चाहिए, जिसके लिए आपको रिमोट सेंसिंग ही मदद करेगा, और
1: जी
0: कोई टेक्नोलॉजी नहीं है.
1: बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है मैडम आपने, जो दो क्षेत्र कही है वाकई में. और मुझे लगता है कि यही स्पेस टेक्नोलॉजी की असली विशेषता है. जब अंतरिक्ष से मिलने वाली तकनीक और जानकारी का लाभ सीधा जमीन पर लोगों तक पहुंचा है, तब उसका प्रभाव और भी बड़ा हो जाता है. समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपर्णा जी, हम एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं. हमने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां देखी है, लेकिन आपके अनुसार भारत को वास्तविक अंतरिक्ष नेतृत्व हासिल करने के लिए अभी कौन सी एक बड़ी कमी को दूर करना सबसे जरूरी है?
0: हमारे विजन के लिए खाली दो चीजें. एक तो मानव संसाधन, यानी कि ट्रेन्ड पीपल होने चाहिए इस एरिया में. तो उनको जो है आप या तो इंटरमीडिएट से या डिग्री से ट्रेन करें बच्चों को,
1: जी
0: सो
1: जी
0: दैट वो मतलब आगे जाके इस एरिया में काम करने लायक बने. और इसमें बहुत चीजें हैं, खाली रिमोट सेंसिंग डेटा एनालिसिस नहीं है.
1: जी
0: जीआईएस है इसमें, एनालिटिक्स है इसमें, डेटा स्टोरेजेस हैं. बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स की वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है,
1: जी
0: तो डेटा स्टोरेजेस हैं. सो इन सब चीजों का उनको अवगत कराना पड़ेगा, और फिर वो इसमें काम कर सकते हैं.
1: बिल्कुल
0: एंड दूसरा ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर सैटेलाइट लॉन्चेस आप आज 5 से 20 या 25 करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों पर निर्भर करके वहां से इंपोर्ट करके

0: ये करने से ये नहीं होगा। सो
1: जी
0: अनलेस एंड अनटिल हम लोग आत्मनिर्भर हों, सारे पार्ट्स यही बनाए जाएं, तब तक हम ये जो सपना देख रहे हैं ये नहीं हो पाएगा।
1: जी जी समझ गए। और अपना जी, क्या एआई का कुछ भी रोल है इसमें?
0: जो एनालिटिक्स है वो एआई है।
1: जी
0: जो एनालिटिक्स है आजकल, जो भी एनालिसिस चल रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस है। एंड जब आप डेटा बोलते हैं, वॉल्यूमिनस बोलते हैं, तो इट इज़ बिग डेटा।
1: जी
0: सो दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही है रिमोट सेंसिंग
1: ओके समझ गए। हाँ बहुत खूब पन्ना जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने। आज की पूरी बातचीत में हमने भारत की उपलब्धियों के साथ साथ उन चुनौतियों, नए अवसरों और भविष्य के संभावनाओं का भी बात समझा है। और अपर्णा जी, आपका एक संदेश हमारे युवा के लिए?
0: में। युवाओं को तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सब कंप्यूटर साइंसेस के पीछे भाग रहे हैं।
1: जी
0: नहीं, प्योर साइंसेस चाहिए हम लोगों को। प्योर साइंसेस भी पढ़िए, कंप्यूटर साइंसेस या सॉफ्टवेयर जो है वो एक साइड इसमें आप सीख सकते हैं। और जब तक आप प्योर साइंसेस नहीं करते, आप आगे रिसर्च नहीं जमता। आप भारत में देखिए तो जो रिसर्च का कंपोनेंट है वो बहुत कम है।
1: जी
0: तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो है, युवा पीढ़ी है, जो इतना अच्छा सोच सकती है, उनको इतना नॉलेज है, वो रिसर्च की तरफ जाए। जब तक प्रॉपर रिसर्च ना हो देश में, तो कोई नया इनोवेशन नहीं होता है। सो उसके लिए अच्छे से प्योर साइंसेस पढ़ें, अच्छे से अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ें, और कंप्यूटर्स के पीछे ना भागें।
1: जी
0: तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि इंजीनियरिंग इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। अदर कोर्सेज आर ऑल्सो देयर विच आर इक्वलेंटली गुड एंड विल लीड यू टू गुड रिसर्च एंड गुड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज।
1: बहुत खूब मैडम, हमारे युवा शायद सुन रहे हैं और वो समझेंगे आपका मैसेज। और अंतरिक्ष की दुनिया अनंत है और भारत की यात्रा भी लगातार आगे बढ़ रही है। आपने हमें ये समझने में मदद की है, इंडिया टुवर्ड्स स्पेस लीडरशिप सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि विज्ञान, नवाचार, युवा शक्ति और देश के विकास से जुड़ी एक निरंतर यात्रा है। अपना जी, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए आपने कीमती समय देने और इतनी सरल और रोचक तकनीक से अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। थैंक यू।
1: श्रोताओं, ये थी इंडिया टुवर्ड्स स्पेस लीडरशिप पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पर एनआरएससी की डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर एन अपर्णा जी के साथ एक विशेष बातचीत। मित्रों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपलब्धियों, नए अवसरों, नए प्रयासों और नए लक्ष्यों की ओर संकेत करती है। इस विश्वास के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले हिंदी कार्यक्रम में एक नए विषय, नए विचारों और नए उत्साह के साथ इसी तरंग पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।
2: చిక్కుకున్నాడు,
3: తెలియని లింక్స్ ని క్లిక్ చేయకండి. ఆర్బీఐ అంటోంది,
2: తెలివిగా ఆలోచించండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి.

फर से अपना किरदार अदा करने की अपील की। हैदराबाद के केवीआर पार्क की तरफ वन वे ट्रैफिक निजाम का रियासती वजीर और जिला इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्णन और हैदराबाद कलेक्टर प्रियंका ला के हमरा मायना किया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि जुबली चेक पोस्ट से एनएफसीएल जंक्शन तक ट्रैफिक के हजूम के मुस्तकिल हल के लिए 1090 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से 4.3 किलोमीटर तवील 6 लेन पर मुश्तमिल जामे स्टील फ्लाईओवर ब्रिज तामीर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के तरीक़ेकार के तहत 2 पैकेजेस में तकसीम करके अंजाम दिया जाएगा। तेलंगाना सर्किल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डीएसआरवी मूर्ति ने बताया कि आलमी योम डाक के मौके पर आज से जारी माह की 15 तारीख तक कौमी डाक हफ्ता मनाया जा रहा है। हैदराबाद के डाक सदन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल एक डाक नेटवर्क लामहदूद इम्कानात के मौजू के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंडिया पोस्ट एक जदीद और अवामी जरूरत

0: పర్సెంటేజ్ కూడా బస్సెస్ తెప్పించేసి జేబీఎస్ కు వచ్చే ప్రతి ప్యాసింజర్ ను తమ తమ గమ్యస్థానంలో చేరడం కోసం అధికార బృందంతో పాటు అందరూ కూడా సర్వ సన్నద్ధంగా ఉంటారు.
1: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जीवन रेड्डी ने बताया कि जारी माह की 14 तारीख को हैदराबाद के उपल स्टेडियम में हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान चौथे T20 मैच के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मैच के लिए मजमू तौर पर 34,000 टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तियाब रखे गए हैं. टिकट की कम अज़ कम कीमत 750 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है. हक इतलात के तहत मालूमात अस्खुद आम करने के मामले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नलगुंडा ज़िले ने रियासत भर में पहला मुकाम हासिल किया है. इस कामयाबी के एतराफ़ में ज़िला कलेक्टर बी चंद्रशेखर को रियासती सतह के बेहतरीन कलेक्टर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया. इस मौके पर ज़िले के अहदेदारों, मुलाजमीन और हक इतलात के एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इजहार मसरत किया है. राजन्ना सिरसिला ज़िला कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने मशवरा दिया कि 5 साल से कम उम्र बच्चों में नौशनुमा की कमी महसूस होने पर करीबी आंगनवाड़ी मराकज के अमले को मुतला किया जाए. विमलवाड़ा में मुनक़िदा नवें पोषण माह की अख्तितामी तकरीब में कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने सरकारी विप और मुकामी रुकन असम्बली आदि श्रीनिवास के हमरा शिरकत की. जनगांव ज़िले के वीमन एम्पावरमेंट सेंटर में मिशन शक्ति के तहत 6 मुलाजिमतों, चाइल्ड हेल्पलाइन में मिशन वात्सल्या के तहत 8 जायदादों पर तकरारात के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की गई हैं. आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर. रियासती वजीर पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद शहर में जुबली हिल्स चेक पोस्ट से NFCL जंक्शन तक ट्रैफिक के दबाव के मुस्तकिल हल के लिए 4.3 किलोमीटर तवील जामे स्टील फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा. तेलंगाना सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल DS RV मूर्ति ने बताया कि जारी माली साल के दौरान रियासत की देही आबादी के 25% हिस्से को डाक की माली खिदमात के दायरे में लाने और बचत के 10% लेन देन को डिजिटल बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है. रियासती वजीर IT D. श्रीधर बाबू ने वाजे किया कि हैदराबाद को आलमी सरमायाकारी और तकनीकी इख्तिरात के मरकज के तौर पर तरक्की देते हुए एक आलमी सतह के ग्लोबल कॉन्फिडेंस सेंटर में तब्दील करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है. BRS कायद हरीश राव ने कहा कि रियासत में 33 अजला कायम करके उन्हें तरक्की के मराकज में तब्दील करने का सहरा साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है. और हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि हैदराबाद शहर में नाजायज कब्जों का शिकार आबी ज़खायर का तहफ़ हाइड्रा के बुनियादी मकसद. उन्होंने आबी ज़खायर और माहौल के तहफ़ के लिए हर फर्ज से अपना किरदार अदा करने की अपील की. इसी के साथ खबरें खत्म हुई.
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था. पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है. इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है. इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं. नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी. वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है. न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए. न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है. देश में

0: स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Kokto Janata Party. The application is regarding an intimation for protest of on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. All mail and express trains departing from the source stations after 2 p.m. today and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow will be cancelled at source. The Railways Ministry said that this decision has been taken

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक

0: रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. Vance की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही

0: सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में

0: देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
1: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर जर्नी,
3: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
2: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
0: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
5: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुद्दुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल

0: సమయం 11 గంటలు. ఇప్పుడు హిందీలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं. पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही. असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है. उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं

0: बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टाने चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rejinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hazirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rejinagar, BJP candidate Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,400.